0: डिस्काउंट।
1: जी हाँ, तो चलो हमने काफी बात की, आई थिंक वी हैव गिवन एज मच इन्फॉर्मेशन एज वी शुड गिव नाउ, बिकॉज बचे जो इन्फॉर्मेशन तो आपको आकर देखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि डू यू गेट द सेम पंडाल फीलिंग। लास्ट टाइम तो मैं गया था, सो इट हैड दैट फीलिंग, पीपल वेर ऑल दे आर गेदर्ड एंड एवरीबॉडी वॉज इमेंस्ड इन दैट काइंड ऑफ एटमोसफियर क्रिएट हो गया था। सो वी आर होपिंग द सेम, और इस बार तो ज्यादा बड़ा होना चाहिए बिकॉज पीपल आर ग्रोइंग, लोग आ रहे हैं दूर दूर से, एंड आई थिंक संदीप मस्ट बी डूइंग दैट एज वेल, इज ब्रिंगिंग पीपल फ्रॉम एवरीवेयर। आप खींच के ला रहे हो, दैट्स गुड एज वेल, सो वी आर गेटिंग मोर नंबर्स, तो काफी अच्छा लगेगा, मजा आएगा और शायद तो फील आएगा, ऐसा लगेगा कुछ लोगों की शायद हम कोलकाता में खुद बैठे हुए हैं, एंड देयर सो मेनी पीपल अराउंड यू एंड हैविंग फन। तो अच्छा, हैव यू मिस समथिंग, स्पॉन्सर्स वगैरह किसी को नाम ले?
0: हाँ, आई थिंक आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, ये सब करने के लिए यू नीड फंड्स, यू नीड पीपल टू सपोर्ट, एंड फॉर अस आवर स्पॉन्सर्स एंड आवर have been a very important part. So मैं थोड़े sponsors है जिनका नाम लेना चाहूँगा। हम लोगों के साथ है Amarok Homes, जिन्हें जो हमारे platinum sponsors हैं, Maruti Mortgage Services, Deep Chakrabarti वो है, Floor Arts, we've also got the team Harmony and Ace Printing and Decorations, and Ishpreet Singh Ji, who have been our platinum sponsors. We also have New Zealand Immigration, who are the other ones, and also बहुत सारे हमारे अदर स्पॉन्सर्स भी हैं जिनको हम लोग शायद नाम नहीं ले पाए, बट लोग पर्सनली भी डोनेट करते हैं, तो उन सब के हम बहुत ही ज्यादा ग्रैटिट्यूड है, और हम वो हैं कि इन्होंने हमारे को सपोर्ट करा इस बार और इवेंट को सक्सेसफुली करने के लिए बहुत प्रोत्साहन दिया।
1: थैंक यू सो मच अक्षत फॉर गिविंग द इन्फॉर्मेशन। हमें मालूम है कि जो स्पॉन्सर्स है दे प्ले अ ह्यूज रोल, बिकॉज उनके बिना तो ये नहीं हो पाएगा। ऑफकोर्स वी नीड फाइनेंस मनी टू पे फॉर द होल, और जो कुछ भी आप करो, स्पेशली इट्स अ फ्री इवेंट, तो यू कैन इमेजिन दैट मनी हैज टू कम फ्रॉम समवेयर, और अच्छी बात है कि स्पॉन्सर्स आर देयर टू सपोर्ट सच कम्युनिटी इवेंट्स, और इस तरह ये जो कम्युनिटी इवेंट हो रही है एंड आपको फील मिल रहा है, जैसे बंगाल में या ओडिशा और नेपाल और जगह जगह पे बिहार में भी मनाई जाती है, सो यू एक्चुअली गेट दैट फील, आप आ सकते हो, इट्स अ फ्री इवेंट, फैमिली इवेंट, आप बच्चे को ला सकते हो, यू कैन ब्रिंग योर होल फैमिली टुगेदर, और अभी तो काफी जो पेरेंट्स भी आ रहे हैं, सो यू कैन इवन ब्रिंग देम अलोंग बिकॉज दे विल बी एंजॉयिंग सच कल्चरल इवेंट्स, एंड आई थिंक किड्स के लिए बहुत ही बढ़िया होता है बिकॉज दैट्स एन ईजी वे ऑफ टीचिंग देम क्या हमारा कल्चर, हाउ रिच इट इज, बिकॉज अदरवाइज हमें काफी कुछ नहीं पता रहता या हम उसको बता नहीं सकते, बिकॉज यू कैन टेल इफ टू शो देम, और शो कैसे करोगे उसके लिए तो हमें जाना पड़ेगा बंगाल, बट इफ यू डोंट नीड टू गो देयर, या अगर आपको नहीं जाना, देन यू कैन जस्ट कम ओवर हियर एंड have the same kind of feel. तो हमारा समय हो चुका है, we'll play a last song before we end up, और जाते जाते just a few seconds अक्षत
0: जी, so thank you so much for having us, to all our listeners and even आपको studio में भी, 17th of October 11 AM Templeton Community Center में, please join us for the Durga Puja, Durga Utsav, इस बार नई मूर्ति आने वाली है, बहुत सारे fun events है, family and आप सब के लिए, and good food, so please join us and have a great time with us.
1: And Sophia, do you speak Bengali?
2: No, I don't speak.
1: Okay, तो हिंदी में आपको सबको वेलकम बोलना पड़ेगा।
2: हाँ, so I again just adding to अक्षत जो बोल रहे हैं कि please हमें join करिए, आपको बहुत मजा आने वाला है और बहुत सारी चीजें होंगी करने के लिए, पूरा एक फुल डे का इवेंट है, बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट वेजिटेरियन फूड होने वाला है, सो या प्लीज ज्वाइन अस एंड प्लीज वेलकम मा विद अस।
1: जी एंड संदीप तो बंगाली में आपके ऊपर ही जाता, सो इन बंगाली हाउ डू यू से ऑल वेलकम, सभी लोग आइए।
3: हाँ, বাংলাতেই বলছি যে আপনাদের সবাই আমরা নিমন্ত্রণ করছি যে দুর্গাপূজাতে আপনারা সবাই আসুন, এনজয় করুন দ্য হোল ডে ইভেন্ট, সবার খুব ভালো লাগবে।
1: That's it. Okay. Yeah, thank you so much. So that was Akshat, Sophia and Sandeep from Mangaliana Multicultural Crashes, inviting you to the Crashes Durga Utsav on 17th of October. It's a Saturday. Don't forget 17th October. So chalo, hum shukriya aur aap se rukhsat dete hain. Baad mein milenge kisi aur video mein.